0: See, it will definitely bring a huge change in women's cricket. Moreover, the perspective of people and those parents who think that there's no career in cricket, I think the mindset will change. I think many parents will give freedom to their girl child to take up the sport.
1: Though she received nothing but encouragement from her family to follow her dreams, the story of Sneha's beginnings in cricket has a familiar ring.
0: तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और सिक्स फैमिलीज टुगेदर और हम लोग बहुत सारे कजिन्स थे और यही ग्राउंड पे हम लोग खेलते थे. वी हैड अ ग्राउंड नियर बाय अर्लियर और तो हम वहाँ पे टूर्नामेंट्स खेलते थे आपस में. एंड आई वाज द ओनली गर्ल बाय द वे. अकेडमी थी लिटिल मास्टर तो वो खेलने के लिए आए थे यहाँ पे मैच और उनका मैच हमारे गांव के जो 11 होती है उनके साथ था. एंड आफ्टर दैट मैच उन्होंने जो हमारे टीम थी तो उन्होंने बोला कि हमारे गांव में एक लड़की है और वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, आप उसको प्लीज़ देख लीजिए. एंड बाय द वे आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट दैट टाइम तो मैं वहाँ पर पास में एक पेड़ था और मैं उसके पीछे जाके छुप गई. सो आई वॉज लाइक कि नो आई डोंट वॉन्ट टू प्ले, ये ऐसे ही बोल रहे हैं. सो दे वर लाइक कि नो कम एंड एक बॉल. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आई अपने अंदर एंड देन आई वेंट एंड आई बोल्ड वन ओवर एंड विकेट भी ली थी मैंने उसमें और एंड आई प्लेड वन ओवर. सी बींग अ वुमेन क्रिकेटर आई थिंक एवरी फेस पे चैलेंज है. पहले तो घर से बाहर निकलने का वो बैरियर था. सेकंड था आप क्रिकेट खेल रहे हो बिकॉज उस टाइम पे सब बोलते थे ये बॉयज का गेम है, यू कांट प्ले क्रिकेट प्रोफेशनली तो बिल्कुल भी नहीं. सो माय पेरेंट्स हैव हर्ड ऑल दोज क्रैप्स.
1: इवन अ स्नेहस टैलेंट टुक हर हायर एंड हायर एंड इनटू द नेशनल टीम, हर स्ट्रगल्स कंटिन्यूड.
0: सी पहले पैसा बहुत कम था वेमेंस क्रिकेट में. अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक की तो इट वाज लाइक अराउंड 1200 रुपीज़ पर मैच. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेक करियर.
1: थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज व्हेन द इंडियन वेमेंस टीम अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस रीच्ड द फाइनल ऑफ द 2017 वर्ल्ड कप, फोर्सिंग पीपल टू नोटिस देम. The next big change came with the Women's Premier League in 2023, followed by the World Cup win 2 years later. In 2022, the sports governing body announced equal pay for international matches. This was expanded to domestic games after the 2025 World Cup win. But with fewer matches scheduled for women, men can still earn up to 10 times more.
0: पहले फ्री टिकट्स होते थे विमेंस मैचेस के लिए बट नोबडी रियली शोड अप. नाउ स्टेडियम्स आर फुल, वी सी दे आर लिटरली फाइटिंग फॉर द टिकट्स.
1: एट द एकेडमी वेयर स्नेह स्टार्टेड हर जर्नी, अ यंग गर्ल इज लर्निंग द बेसिक्स ऑफ द गेम. वेदिका, हु इज 6, इज फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ हर ब्रदर शौर्य.
2: अगेन कवर ड्राइव करेंगी. उधर से कवर ड्राइव, नाइस शॉट, शाबाश शाबाश. थोड़ा
3: बॉलर को देखे सामने और अपना फुटवर्क इस्तेमाल करके सीधे स्ट्रेट ड्राइव करेंगे आप, ठीक है ना? ओके, स्ट्रेट ड्राइव, ब्यूटीफुल, शाबाश. अभी कवर ड्राइव करेंगे.
1: व्हेन ट्रेनिंग एंड्स देयर फादर कम्स टू पिक देम अप एंड इनवाइट्स अस बैक टू द फैमिलीज होम.
4: The
1: sibling's father, Vimal Rajput, wanted his son to learn cricket and enrolled him at the academy.
5: वेदिका का ऐसा हुआ, इसको छोड़ने गया साथ में, मैं बोलूँ इसको भी यहीं छोड़ दे. मैं नहीं मैम, नहीं छोड़ पाऊँगा मैं. तो मैंने मैम नहीं आओ परेशान कर देगी कि नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं इसको संभाल लूँगी, हैंडल कर लूँगी. बस डरते डरते छोड़ा. आज है कि तुरंत जाते हैं ये क्रिकेट के नाम से, स्कूल से आएंगे अपना फटाफट काम करना सब करना और क्रिकेट जाना है.
6: तो जिस टाइम पे हमारा कॉलेज स्कूल का टाइम था, उस टाइम तो अपॉर्चुनिटी

0: Capitals is one of the most successful clubs. They've played in the men's IPL since the league started in 2008 and been finalists in every WPL season so far. This is Sneh Rana's first season playing for the club and fourth time playing in the WPL.
1: WPL's aane se bahut sare changes hue hain बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको इंटरनेशनल टीम में कॉल अप नहीं आता है. उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है अपने को प्रूव करने के लिए. या सो मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. आई थिंक वो एक मोटिवेशन भी देता है कहीं ना कहीं.
2: लाइक इट्स बीन वन वीक विद द टीम एंड बहुत मज़ा आ रहा है. काफ़ी सीखने को मिल रहा है द सपोर्ट स्टाफ एंड सीनियर्स एज वेल. रोज प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ सीखते हैं लाइक टॉकिंग टू आवर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिस्ट.
0: दिया रिप्रेजेंट्स अ न्यू फिनोमेनन इन वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया. गर्ल्स हुव एंजॉयड सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटी एट एवरी स्टेप.
2: बीइंग अ गर्ल क्रिकेटर आई हैव नेवर फेस्ड प्रॉब्लम्स लाइक दैट. लाइक आई हैव ऑलवेज गॉट फुल सपोर्ट बाय एवरीवन. लाइक माय पापा ही इज अ फुल टाइम मैनेजर फॉर मी एंड Mama, Papa are really happy and really proud that I'm representing WPL, like I'm representing Delhi Capitals this year.
0: Her parents both work in the IT sector and left their jobs in the city of Pune to move to rural Haryana, just to be closer to one of the country's best cricket academies.
3: Abhi apne khana khaya?
4: नहीं
3: खाया अभी. अच्छा आज आपका सेशन था कोई?
4: स्विमिंग सेशन था.
3: स्विमिंग सेशन. यू डन विद इट?
4: यस.
3: वो चाइल्डहुड से ही बहुत एक्टिव थी. स्केटिंग क्लासेस दिखी तो मुझे स्केटिंग करनी है, फिर बास्केटबॉल करनी है, फिर उसने बैडमिंटन खेलना था, उसके बाद फिर उसने क्रिकेट स्टार्ट कर दिया. लेकिन उसको जो भी देखता था वो यही कहता था कि शी इज़ वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, तो आप इसको स्पोर्ट्स में डालो. उस टाइम तो अवेयरनेस हो गई थी सब लोगों को, तो गर्ल्स क्रिकेट खेल रही थी व्हेन शी वाज 11 और 12 इयर्स. तो इतना मुश्किल नहीं हुआ हमारे लिए. तो हमने यहाँ पे बड़ी एकेडमीज पहले देखी.
0: दियाज़ जर्नी वुड हैव बीन अनइमेजिनेबल जस्ट अ फ्यू इयर्स अगो. But now, India's women can finally embrace the country's national obsession as their own.
5: Genuinely, there's no stopping Indian cricket. A lot of people have called Indian cricket like the sleeping giant. I think we've woken now with the World Cup, but I think a lot more needs to be done to make sure the giant stays awake for a long time.
6: One in 10 Americans over the age of 65 lives below the poverty line.
7: The money runs out, and then you wonder where you're going to get your next meal from.
8: Nearly a third of people living here are in poverty.
9: It's either home, or it's health, or it's neither.
10: Making us broke. It's gotten to a point now where I feel like I'm lower class.
11: The affordability crisis in the United States.
12: We can do better.
11: Special coverage on This is America. To prevent migrants reaching its shores, the EU is financing Tunisia to control its borders.
13: More than 100 million euros of EU funding.
11: Arrivals from Tunisia have fallen by 80%, but at what cost? People in Power investigates the brutal tactics used.
14: But without us, it will be reversed.
11: And meets those caught in the crossfire of a political battle over migration. Trapped in Tunisia on Al Jazeera.